0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर?
1: यहीं है? कौन?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कोई छनी मुसाफर रेणु रे जी जदने रो। अरे माता रोवरे बारो मास, भेनो रोवरे छठी समास, तन की तरिया तीन दिन रोवा, फेर करे रे घरवास।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद को तो वाड़ा, तारो कोई छे नी रे भड़ा, तारे डीले प्रेरो खींच लिए कपड़ा।
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जाए डपड़ा, दारो सड़को मार ब्यान जल्दी पाड़ा, कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा।
1: बोल भाई।
0: होटो आनान क्या मोटो, पीला कांटो काड़ा, पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: ने माथानी ई मानव घणो मोटो छ यार कीमत घण जबरदस्त छ
1: घण मोटो छ
0: अरे कहने का कह दिया कित्ता बजाऊ रे ढोल ये एक सुवास तिनी ताले रोमोट
1: खरोच खर्चा
0: ई मानव छ जो पशु का अपनिया हो नर का कुछ न हो अरे नर ने करनी के नर रो नारायण वो
1: खरोच खर्चा
0: नर रो नारायण रो अपने हाथे में छ
1: खरोच
0: सरगे जारो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: नर के पड़े रो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: मां भेने काकी दादी केता ने शाबाश करा रो अपने हाथे में छ
1: अरे भाई वाह
0: आनी ओळो सोळो बलन मार खान ढोळो सबेन गटारी कर पड़े रो अपने हाथे में छ
1: वाह भाई वाह रे
0: सेवा।

0: मेर माया तानी लेने को हरि नाम देने को अन्नदान चलने को निनता डूबने को विमान
1: बोल भाई बोल
0: जेन डूबदा छ जको मक्कार सरनाई करोड़ो थटरण गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु
1: देख रे भैया
0: जेन जको नानक्यापनो लेन जेन तुकाराम महाराज कहगो छ नानपन देगा देवा नानपन देगा

0: सदा क्यों नो छ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभीज कर ले। अच्छी बातें सुझको आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो।
1: बरोबर
0: प्रभु रामचंद्र भगवान रावण मारण पार दिनो लक्ष्मण ने मिलो। अरे लक्ष्मण राजनीति कूच लानो रे, तो लक्ष्मण ने तो रावण क्यों अरे सवार कर रो, आज कर लो, आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो, अच्छी बातें वेर भी तो आज कर लो।
1: खरो

0: सगे न जो काल खादा था
1: हाँ?
0: अरे हरि नाम ले वाले ना नमस्कार कर था
1: खरोज खरण
0: के तानी मारे गोपाल कृष्ण रो नाम
1: हाँ?
0: प्रभु राम रघुवीर रो नाम
1: हाँ?
0: माता पिता सेवा
1: बरोबर
0: अरे सगे माई कूद सानो
1: हाँ?
0: ये जन्मे माता ने मर्दो रे मर्दो अपन जरा कीर्ति रूप वर दो
1: हाँ
0: मर्दो अपन कीर्ति कर दो
1: खरोज

0: अरे इंद्र पड़गे भग चंद्र वेगो काळो नारद चुगो अरे नार चुगो भजनेरो चाळो
1: हाँ।
0: अरे 60,000 वर्ष विश्वामित्र कीदो उतो तप
1: बरोबर
0: अरे एकच बाई आई ओरकन विद्या वेगी गप
1: हाँ।
0: अरे भस्मासुर मौनीर सो बजान बळन वेगो खाक
1: वाह भाई वाह।

0: करे भा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने सिरे का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणु को ताप आवरो था डॉक्टर को नाड़ी तपासन जुठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भा 105 डिग्री ताप चढ़गो रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री चढ़गो तो तू डगर जाई छी
1: खरोस कर
0: डगर जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जारो चारनार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस काई करू साहेब 1000 रुपया दे दा
1: ई
0: दवा दारू ले जो
1: खरोस कर
0: आनी तू को पत पाल खाटो खरो मत खोग के दिनो
1: खाऊनी
0: ठीक सन के तानी 1000 रुपया दे आयो
1: हां
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तू तो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी तो हांडी उड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी उड़ा मुंडो को वेगो जो वेगो ढगर को ढगर को तो कती केवड़ी व्यापारन को नहीं जो सारी ताने खाड़ी कराला को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले छ।

0: मिले अरे भगवान सौंदारो पत कुणसो छ
1: कुणसो छ
0: डाक्टर गनेरो पति वेगो खटो खरो न खदो तो ताप नगदा छ
1: हाव
0: डाक्टर सौंदा ज्ञानी श्री भागवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबारो गाता नौनाथ वास्ताणी मारे गोपाल कृष्ण रे 84 तोरे र
1: हाव
0: अरे पायरी कर बेसे र तो पत कुणसो छ
1: कुणसो छ
0: अरे आपरे घरेरी चटनी भाकरी छरला केरी बना दधा केरी
1: हाव
0: अरे दूसरे घरेरी सिरापुरी छरखा केरी
1: हाव
0: अरे आपरे घरे र मांद सुंदा नारा तने न गिरे लंगाए पार अरे दूसरी नारी रो दीद ने रो प्रेम झूठो जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे त्रादुन कांटो अरे तोला उंदाड़ कलियर बेटा नपन।

भाभी सबकी भाभी गरीबेर मार कर शेर भो जाई लागत है कोई केनु मैं भी दूसरे कान काटे कुटे कुतरा नाय लोकुर घट कर हणु छु मारी भी मालकन जबरदस्त भेड़ गो छ वोरोई काम ओवड़ी चाड़ो मारो एवड़ी चाड़ो भला लागत बेटा के अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा शर्म नहीं आए आपन मालकने इज्जत को तो मोट अन गरीबेर का तो नानकीज काय बेटा अरे कीड़ी थी परमदेव तुनी इज्जत सारक छ कारण केन काय

0: चाहे माटी। अरे दोपहर माटी, दोपहर तो नहीं माटी, दोपहर तो छोड़ दिनों काटी।
1: वाह भाई वाह रे।
0: अरे ढूंढ ली दो दारूर भट्टी, पीले ताने अंधारी खान घरदनान तोना को तट्टी, मालकन हेटे थी उठी भारान दीटी, तो मार भ्या धोती घोड़े तुनी छूटी, मालकन तो देखता नहीं बरकान धाटी।

आइटम कहीं लावा ये छटाक तेल लाओ जन आड़ दाड़ खानो। अरे नीलगाम आटा पंचे 40 दारू छोड़ दे, आटा पंचे 40 रुपया रो एक किलो तेल आया कनक, एक धो तेल हांडी में खलाऊंगा ना के। अरे कालो भूर पानी खोरे

एक छटाक तेले माई मावली काई करे रे भा नू करता ने ऊंदा एन की तो एक न दी बूंद पड़ते खमत याड़ी शेज पड़ गए छोरा र कावली माई दीज बूंदेर माई हेड भगला तपरच फक्को वचक जाच हरोगार पानी खान सत्तो पड़ रे छी अन एक दारू तो छूटे नी तू मानस का अरे लार देख साधु संत काई कर गए मोती वालो सदा क्यों को चो कोई मारे मनेर मकोनी करो कबीरदास गोरुबा काका सावता माली नरारी सोनार जनाबाई मीराबाई संसुकु भाई चोका मेला सजन कसाई निवृत्ति ज्ञानदेव सो पान मुक्ता भाई एकनाथ नामदेव तुकाराम कबीर कमाल रोजात सामान नरहरी सोनार गाड़गे बाबा कैकारी बाबा सुदगुरु स्वामी नामानंद बाबा नामदेव कीर्तन करी पुड़े नाचरे पांडुरंग हरी नाचता नाचता गलाला पितामर कबीर मने देवा पितामर आवर मुनेर मुके मायरो बोल छ अरे तू सामलोग तो तारो कल्याण वे जाए थोर संताचा महिमा थोर संताचा महिमा।

0: सा।
1: हाँ वाह।
0: तो ना लकड़ी वोल रो तो सुतारी सों जानू, सुतार छोलन बरोबर करे सा, लोवा वोल रो कन केन कतो, लवारे कन जानू छोलन वन को तपान कूटन बरोबर करे सा। अरे तू वोला वाग रो तो बेटा कीर्तन भजन पोती प्राण सामना बरोबर सूदो वे जाई छे, कन संगत करो रे सज्जन की बढ़त बढ़त बढ़त जाए, संगत करे दुर्जन की तो घटत घटत नीचे आए, संगत करी छेली गजकी मनमान फल खाए।

करो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे, भगवान एक नाम ले लो रे, भगवान रे भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे काई पड़े नी रे, काई कम पड़े नी रे तुम्हारे जिनगानी ना।

0: अबा तू केस अरे माटी रोज गीत गायो बाहर को नहीं गीत गायो बाहर तो को मैंने बुड़का बसा रेड़ सा अरे सामल कान भरन बाई कुछ को कहीं लागत सा
1: रोज खर्चा।

0: सेवा की दिरे अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चालनाए सता। अरे कलियुग के माँ बनना की गीता। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भारा नितो सतवाले जाऊं तारा
1: देख रहा।
0: अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देवरो चरण रो पानी लाई तीनी देव पर पानी छिड़काई। अरे तीनी रो तो बालक बनाई तीनी रातम तीन हुंडा धारण माता पाने घालन हलाई।

0: माता तार पेट माते निकन तार थट्टा कोनी करू ए वेद पुराणे में से वाते सिजुगु तन में क्यों
1: हां भाई
0: तारो देव कुण छे वेंडी तारो देव स्वर्गम छेनी तारो देव पाताळम छेनी तारो देव पूजी पुराणे में छेनी तारो देव कतच जो बाई पतिव्रता देवे पर तार सता पतिव्रता रो भाव तारो

0: माता अनुसुईया माता काई की दी थी अनुसुईया माता कौन से देवी नाम धोखी थी कहीं लगाड़ दे उदे उधे उधे उधे की दी थी भगवान शंकर फात करच ये तीन ही तीन काम करता नहीं आओगे तो ये तीन ही मुड़ा चढ़ रहे काय कला तुम्हारा मुड़ा केवड़ी चढ़ रहे चाल देख कैसे सारू चढ़ रहे तो काचा वचन दो एल वचन काय वेगो नार स्वामी आया तो वन हम पूछी हम देवे घरेरी बाई सा मानव लोकुर में हमें तो कोई मोटी से काई कतिर अनुसुईया माता को छगत मान लोकुरे माई मर्तवी देशेर माई वो बाई रो सत्वा लाओ जेरे पछ बाटी पानी तुमने ठीक का हरकत छे नी अरे बाईरी बातें सामलो सामले सवी का हरकत छे नी सामलो घरेर माई मत खेते माई खत जगेर माई पत वात सामलो पर सामलेरी सामलो न सामने वाजर सामने गया तो काय बचा
1: काय बचा
0: कांडेर माई जर छोरी सगाई की देवर मालकनेर आरे मारो माटी जर रोकन को तो काय करे छू
1: काय करे
0: सगाई भी तोड़ा ना कर
1: हाँ।
0: सगाई न तड़ाई वाया भी वेगो तो वो छोरी होटो बला लावा पण माटी रो साले देनी का साले देनी माटी न आरे में ले ले छ माटी न आरे में ले ले छ माटी न आरे में ले ले जको भाई वो संसार साले देनी वो नंदी करा ढाई जनो आयो पानी तो प्रज वेंड गजा करण केतानी मन काय केर छ भाई

0: सेवाकना कांदे पान नाच कोणी की रे जन्म दिवाळी माता तोन म
1: हावा
0: अनुसया माता कुणशी देवेंद होकेन की ते कोणी की काय की दी ओ ब्रह्मा विष्णु महादेव मानवरो भाई दानवरो देवरो भाई मानवरो बाईरी वाते सामने आ तो वरो जो बरोबर करस कु फेरस बाई बाईर आरे मारो माटी तो बाई कु फेरस बाई लोग देवे मानसे ना दोरी फिरवी ते भौर्याला दोरी फिरवी ते भौर्याला बाई ना।

0: बाईने डिलेम देवा आवच
1: हा
0: बाईने डिलेम देवा राज भगत भी खेलचन वोई खेलच ठीक छ
1: खरो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखू आमरे भा सरपंचर बाईर आईनी वाणी गुजर मारवाड़ी बाईर डिलेम देवा आईनी ये सारी दाड़ो भाटा पाड़दाणी काळ काबर वेरा आर दाड़े में एकड़ा अंगुली खिरवाड़े डेले डिलेम देव केवड़ी धरसारे वेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ये माया च फसायव छ बाई जको काई करे छ बाई डिलेम देवारो अरे हूं हां करी एक छोरा हेट बैठो तो वो काई की दो बाई डिलेम तो देव आरोस को लागो 5-50 रुपया कड़े में खसोड़ मिली छ वो तरा पीसी काली दो को तो कला बाई काई कहे वालो छ के देता नहीं कन बैठो तो छोरा खाएंगे तो घाल देनो पीसी हाथ में काड़े नहीं गयो बाई काई कच गब्बे स्तन डाकने खाता गब्बे स्तन मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना काई भी पाड़ेगे तो गब बैठ रहनु पण लबाड़ छ माया बड़ी कटूर छ काट कली दो खावत छ अरे हकीम बिचारो कटकट दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कचरा दुगो कुचुतो ने
1: का का
0: हजार सूर्या भड़थाणी
1: हां
0: अन वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हावा
0: को तो हजार सूर्या सकर खान हेड पड़ जाते है वेंडी आवड़ी बिली देवी तार माई कु घुस जाती वे लबाड़ लबाड़ लबाड़ माटियांग हुबो तो ई छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी ने काय के तरे
1: हां
0: करी ना उ काय के लागो मार मालकन मन बलारी श्री राम आयो यारी मद्दी करू छे एकच वच साटा खोदू एकच वच धूड़ पाडू एकच वच मनद्दी करे यारी या करो
1: हाँ।
0: बेटा तारो बरोबर करु बेटा तारो कल्याण करु बेटा तो डबल उनु बेटा वाया की दे जना ई माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की जना सात फेरा बना यरो माटी हो अब ये डीलर माई आओगो जना ये तो यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाई दर वेजा हाँ। खिलाड़ी कविता को भुकम वेगो तुगो टेम आओगो सा वो रे सारू तुगो भगवान नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नहीं चौरासी चुका लो

0: माटीर बाहर वा सामने कुण आओगे ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुष्या घर आओगे अनेक निरंजन भिक्षा आए भाई आले अतिथा मुरबर द्यावे मागे पुढे पहुन का तुकाराम महाराज के उगोच करण केताने भिक्षा भरला आणखी याडी नूला आणि कुल्या वाचो ढुंगळी भिक्षा तार मायर कोथी माहिती हुई जुगाल ठीक स गे माई पतिदेव अंतरदशी सुतो तो गड़बड़े थी कि काय के लागो काय गड़बड़ चाल रोच गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए छ मन काय केरे छ भुंगळी भिक्षा घाल केरे छ ऊ के लागो तारे माई वत चमत्कार तो करेल लगा नमस्कार म काय करे आलो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाटी नाक नाकेर छे नी तो अन्न पूछता मोटो खेल से तू उठ हेड़ती हेड़ती उठाड़ वठाड़न बसार देनी पगे पर मातो मिल देनी पग धोनो पानी पील दी अन तीनी देवे पर पानी मार देनी तीनी देवे रावड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे में हुंडा झला देनी पालनो हलाती बेसगी केर जरे पर बेटी है वेंडी डीले माए तो कहीं कुर्सी देवे धोकिन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर मातो पटकले छी माटी कुम बोले छी माटी ती तो शुद्ध बोले मुंडो भरण बोल माटी एवढी धुणी धोकचन एवढी माटी कोण बोलच धोळस मुंडे रा हरे गार जाबडे रा मुर्यामा खाईनी याडी पाडेनी हिराण काय मारसा मुंडो फिरण जणीवी काय सारी तांडे लान येन घाल दू काय सारी तांडे लान घाल दू केचिन धुणी पर मातो पटके छी धुणी पर मातो पटका लोई काळे दवाखाने माई जर मीना बरो सुती तो नी याडी साईवे ने करण के भाई।

0: अरे नारद स्वामी चलो गोरे वो तो गिरजा साइत्रा लक्ष्मी कना ये वेंडी जावे नानका नानका छिछा करण पाड़ मेरी झोली में जाना बलाला तुम्हारे पति देवे ना
1: खरोच खा
0: अरे गिरजा साइत्रा लक्ष्मी आई रे अनुसुईया माता कना ए जलमा देवाली चुकवे को हमारो पति दे दा हमें ना ले जा तुम्हारो पति ये बेटे ले जाओ वो के लागी प्रभु राम ले जामा बात खर्च मारो कालो तो ना तारो काबरो मन डिगरा दो भूल पड़ जाए कुंकरिया ए जलमा देवाली माता तू चढ़गी हम हारगी हमारो पति हमने अंदर ए गिरजा इधर तारो भगवान शंकर ए साइत्रा इधर तारो ब्रह्मदेव ए लक्ष्मी इधर तारो विष्णु आशी धाटी महाराज होटो देकर लार देखन आगन हास अजी नानके नानके शिचार करना के तो काई क्रिया अगन के पर तो तीनी वचन दे गए दत्तारो अवतार वेतानी मोहर गणेर माई जल में लीदे कोला प्रेम माई भिक्षा की दे घानगा प्रेम पांच मिनट बैस गए अनि निद्रा दुबा जी जुगो मोहर गणेर कर अपना खेत मारवाई छात्री ताकन मारी जल में जड़ी माताम छ पर काई करू लागत

सेवा की दिरे संडलिया माता। अरे तीनदार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेवे कने थी। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीनदार थमाई।

गोपाला गोपाला प्यारे नंदलाला पर एक दारू भाई काई की दी ये गोपाला गोपाला करे वाला कौन से के ने वन पकड़ी थी काय छोरी काई कर रही थी भाई ये काई कर रही थी कुछ है मन वचन द ये लो वचन काई कर रही थी ये देखे भाई मारे घरे मुड़ा गए तू की थी के छे यार दारू के पछ मारो मालक तो देख ली दो छ अन तू वो भाई साउन लेगी तो ठीक नहीं मैं फांसी खान मर जाऊं करे तो यार मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बेतो कहीं है जन्म देवाली माता गोरे थी टांगे छेनी कुणी थी हाथ छेनी केला नहीं पाथरो जेन मारो सोने सिर को क्यों सोने श्री केरी तम भी काई करो पगू पड़न कुचू हाथ जोड़न कुचू तुम्हारे नसीबे ना आंदो मलो लंगड़ो मलो खुड़ो मलो आचो मलो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देव कर समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी बाज आए करण के तानी वो माटी ने जो वचन दिया वो खेला भाई कहीं हरकत छे नहीं तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूना रो छो कू मेलू ऊकेला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ छ एक आनी टेमे ने फलाना कोडाओ घर तो आज को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकोवर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डीम घाले तानी भारत जारी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेड़िया छ देव घणु गोपाल कृष्ण घणु खेड़िया छ देव रंगारी रंगारी देव रंगारी रंगारी 16108 नारी भोग